0: गाइस एउटा कविता सुनौँ है।
1: धेरै ट्रिट त हो नि, सुन न।
2: पहिला
0: सुरु त हुन दे न
2: यार।
0: खोलाको पानी फ्री,